जे राक्षसां तो देवता नहीं बनाया तो फिर मेहर किस काम। पशु प्रेत मुगध को उतारे, पाहन पार उतारे, जेड़े पत्थर हिरदे सन पाहन सन, वली कंधारी वर्गे हंकारिया नू भी तार दिता, नीवा कर दिता। मन नीवा हो जावे तो रब दे नजदीक हो जाएगा। धन गुरु नानक पातशाह जिथे जिथे भी वेख्या के किसे कोलो सृष्टि नू दुख पहुंच रहा है, ता आपने पापी नू बुलाया नहीं, घर जाके तारिया, घर जाके मेरा कीतिया। धन गुरु नानक पातशाह संसार नू तारदे होए देव गंधार शहर विच गए। ये बड़ा जंगली अते पहाड़ा दा इलाका सी। ये लोग जीवां नू खांदे सन, कोई भी मनुख इना दे हाथ लग जावे उसका मास खाना। इस नगरी दा राजा देवलूत जो हर दम खून दा प्यासा रहिंदा सी, लखां देव इस दे अधीन सन। जेड़ा बंदा इस दी नजर विच आ गया ओ कदी बच नहीं सकया। इना दे अत्याचारां दा सारे इलाके विच बड़ा भय सी। गुरु नानक सच्चे पातशाह जगत जलंदे नू धारदे होए उस जंगल विच चलदे चलदे देव गंधार पहुंचे। मर्दाने बेनती कीती, महाराज बड़ा चंगा है, कुछ दिन ठहरांगे शहर विच, पहुंच के मेरी भूख भी मिटेगी, कोई पदार्थ भी मिलनगे शकन नहीं। धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे मर्दानिया, ये लोग बड़े खतरनाक हैं, कौडा ता राक्षस एक सी ना, कौडा राक्षस इत्थे लखा राक्षस हैं, मानस जाति नू ए चुन चुन के खांदे हैं। कौडा ता मनुखा नू तेल विच तल के खांदा सी, पर ए मनुख दा मास कच्चा ही खा जांदे हैं, एडे भयानक हैं। महाराज फिर एहो जिहियां खतरनाक थावां ते तुसी आपे क्यों पहुंच जांदे। मर्दाना कंबिया, महाराज एडे भयानक शहर विच क्यों जा रहे हो, चलो वापस चलिए। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहण लगे ईश्वर कृपा करेगा, एही राक्षस तेरी तन मन करके सेवा करनगे, सीधे रस्ते आ जाणगे। मर्दानिया तेरी भुख ने अनेकां दा भला कीता, अनेकां नूं तारिया, अज भी किसे दा भला होवेगा। एही लोग तेरे चरण पूजनगे, तैनूं 36 प्रकार दे भोजन लिया के छकाउणगे, तेरी सेवा करनगे। धन गुरु नानक पातशाह समाधि स्थित होके बैठ गए। इतने नूं देव दूत असे उस दे राक्षी फौजां सामने आ खड़ोतियां, बड़े खुश हन कि अज एक शिकार नहीं तीन मिलते हैं।

जिना बूटियां नू जिना ब्रिशां नू सुमेर पर्वत दा आसरा है ना, चक्कर जाओ ना डोलनी, कितने चक्कर आ जान ओ फिर बूटे डोलदे नहीं, उना नू कोई हिला नहीं सकदा। इसे तरह मर्दानिया जिना नू करतार दा आसरा है, अकाल पुरख दा आसरा है, उना दा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकदा। आहा किथे किथे गुरु नानक सच्चे पातशाह ने

0: मन निम्रता विच आ गया, हंकार नू पार पै गया। जदो रिदा सच्चा हो गया तां देवलूत नू हुण गुरु नानक दे दीदार हो रहे हन। उचारण करो श्री, दर्शन हो रहे हन। मन शुद्ध हो जावे ते फिर गुरु का दीदार है। गुरु की बाणी पढ़ो, गुरबाणी कहे सेवक जन माने, प्रतख गुरु निस्तारे। फिर गुरु प्रतख नजर आउंदा है बाणी पढ़न वालिया नू। उदी याद विच बह जाओ, ओ नेड़े है। जे अहंकार दा पर्दा है तां दूर है। साडा अंतःकरण शुद्ध होएगा, गुरु सानू नेड़े दिखाई देवेगा। इसे लई जपन वालियां दी संगत करी दी है। महापुरखां दी संगत दी की लोड़ होंदी है। सगल गुणा गुण उत्तमो, परता दूर न पिखरी। ओ परता अकाल पुरख वाहेगुरु ईश्वर दूर नहीं पासदा। इस लई जदों नेड़े समझदे हां तां फिर ओ नेड़े हो जांदा है। उचारण करो श्री
1: वाहेगुरु।
0: अंतःकरण शुद्ध हो गया, चरणा ते ठह पिया। नैणा दे जल नाल चरण धो दिते। ओ मेरा दे साईं, ओ बख्शिशा दे दाते, असी रोम रोम गुनाहगार हां। पापा दी कोई गिनती नहीं, जेरे मुंहों बोल के दसीए के कितने को कीते हां। पर कृपा करो, जिस तरह भी बख्शे जांदे हां सानू बख्श लै। गुरु नानक पातशाह कहन लगे, भाई तुहानू तारन लई तां इत्थे आए हां। अकिदे जफर जाल कटदे पहाड़ां विचों, होंदे भयानक जंगलां विचों निकल के, ते किथे तां गुरु नानक पातशाह बैठे हन पापियां नू तारन लई। ए सारी धरती देवां दी सी। कोई जीव जंतु पंछी परिंदा इना ने कोई नहीं छड्या, मनुख कदे नहीं छड्या। भयानक इना दे चेहरे ते कम भी भयानक करने। अज धन गुरु नानक पातशाह एडे वड्डे पौजल विच खतरे विच किवें आके अडोल बह गए। चेहरे ते कोई ने इलाही नूर चमक रहा, डुल डुल पैंदियां हन मेरा दी मीह नाल अखां आप दियां। ते कहन लगे, भाई ठीक है तुहानू बख्श देंगे, पर ए जो तुसी माड़े कर्म करदे हो, मांस खांदे हो, ए शरीर तां हरि मंदर है। निरंकार ने 84 लाख जून दा सानू बादशाह बनाया। ए शरीर हरि मंदर है, कोई शमशान भूमिका नहीं। जेड़ा मास आवे खाई जावे, खाई जावे हर वेले, क्योंकि अंदर भी जठर अग्नि बल रही है जेड़ी शादी गजा नू हजम कर दी है। ते जे शुद्ध भोजन खाओगे तुहाडी आत्मा भी शुद्ध रहेगी, तुहाडा मन भी शुद्ध रहेगा। इस शरीर नू हरि दा मंदर बनाओ, शमशान भूमिका ना बनाओ। मुर्दे ना जलाया करो एदे अंदर, मास खाना छोड़ दियो। ता सारिया ने रो रो के ए प्रण कीता महाराज। हुण असी कंद मूल चुन के अपनी खेती करके जो कुछ मिलेगा, जो निरंकार ने साडे लई रखिया असी ओही छकिया करांगे। पर साडे ग्रह विखे हुण नगरी विच आए हो तां भोजन तां करो ना। ते धन गुरु नानक पातशाह मरदाने नू कहन लगे, दस भाई की छकना, तेनू भुख बहुत लगदी है। जाओ भाई जो तुहाडी इच्छा है। ते तरह तरह दे नाना प्रकार दे फल तोड़ के ले आए ए देव, ते गुरु नानक दे चरणा विच आ रखे। धन गुरु नानक पातशाह ने नाले तां इना नू अपना सीत प्रसाद दिता, नाले अपना हिस्सा भी मरदाने नू दे दिता। ए भी तू ही शक लै भाई, असी तां अकाल पुरख वाहेगुरु दा सिमरन करके ओदियां सिफतां करके रजे होए हां। इन्हां दा प्यार सी ते थोड़ा जिहा पदार्थ अपनी रसना ते लाया, ते सारी नगरी नू नदरी नदर निहाल कर दिता। ते फिर जय जयकार हो रही है, जय जयकार भयो जग अंतर, लाथे शगल विसूरे। ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਂਗਾਂ ਤੋਂ ਹੰਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਗ ਬਿਰਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮਾੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੁੰਝ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਦਾ, ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ, ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਔਰ ਸ਼ੁਭ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਾਗਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਾਗ ਗੰਦਗੀ ਖਾਂਦਾ, ਹੰਸ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਗ ਚੁੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ? ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਧਾਰਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਕਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੰਸ ਬਣਾਵੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ।

धन गुरु नानक पातशाह ने जो सारी सृष्टि दे दुख हरन लई संसार विच आए सन, आज इना देवा नूं वी देहां नूं वी देवत्यां दी नगरी बना देता, धर्मशाला बनवाई। भाई दोनों टाइम सत्संग करया करो, भला करया करो, जीवां ते दया करया करो, तुहाडा भला होवेगा, तुहाडी नगरी सदा आबाद रहेगी। एडियां मेरा होर भी अनेकां ते कीतियां धन गुरु नानक पातशाह ने, जिथे भी मेर हो गई फिर कंगला पातशाह हो गया, जिथे भी चरण पा दिते ओ धरत पूजनीक हो गई, जिथे भी रेठे ते नदर पई ता अमृत हो गया। इसलिए जिथे मेहर तेरी।

हमारी जेहबा एक ब्राह्मण हर के गुण अगम अथाह हम क्यों कर जपे हर तुम बड अगम अथाह।

Hamri jeba ek pravu. Jeba ek anek gun tare nanak charni paahe. Jeba ek kaman gun kaiya tere gun paute. मैं एक न जाने कवन गुण कहिए जेबा एक तू समर्थ वड़ा मेरी मत छोरी ना मेरी मत छोरी हम अज्ञान अल्प मत छोरी तू समर्थ वड़ा बड़ी हो बड़ा

नानक को हर बख्श रहे हो, जन नानक को हर बख्श रहे हो। हमारी जेहबा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाह, हम क्यों कर जपे आनिया हर तुम मद अगम अगाह। हर देहो प्रभु मत गुर सतगुर के पग पा, सत संगत हर मेल प्रभ हम पापी संग तरा। जन नानक को हर बख्श ले हो, हर तुपे मेल मिला, हर कृपा कर सो।

अमरदास अंगद पहचाना, अमरदास रामदास कहायो, साधन लखा मूर नहीं पायो, भिन्न भिन्न सब हो पर जाना, एक रूप किन हो पहचाना, जिन जाना तिन ही सिद्ध पाई, तिन समझे सिद्ध हाथ ना नानक अंगद को बप धरा, धर्म प्रचुर इह जग मोह करा, अमरदास पुन नाम कहायो, जन दीप ते दीप जगायो, जग वरदान सवा आवा, रामदास तब गुरु दिजे पूर्व देवड़ा, जिसकी वस्त किसे घर आवे, बैठा स्वर्गी पातशाह, रामदास सतगुरु। जग तो मुन ध्यान धरे फिरत सकल जग, कबहू को पावे आत्म प्रकाश को, वेद बाणी सहत ब्रंच जस गावह जम को, शिव मन कहे ना तजात कबिलाश को, जम को जोगी जनी सिद्ध साधित अनेक तप, जटाजूट पेख किए फिर उदास को, सो तिन सतगुर सुख भाए।

गुरु साजी दवाजी सास होती हो राग श्री राग तुहाडी सेवा विच पढ़न की सेवा कर रहे हैं। श्री राग का जो चलन है वह दो सुरां ते निर्धारित है, एक जिसन असं ऋषभ कहने सा तो बाद दूसरा स्वर रे है उसको ऋषभ किया जाता है, इसका प्रधान सुर है। और पंचम जिसन पा कहने सारे गामा पा पंचवा सुर जो है वह इसका वजीर सुर है। इन दोनों सुरां के सुमेल के नाल श्री राग का जो स्वरूप कायम हुआ, जिस तरह

的当你当你当你当你当你当你当你当你当你当你当你当你当你当你当你当你当你当你当你当你当你当你当你当你当你当你当你当你当你当你当ताकर दी दे दे ताल ताकर दी कौन करना ताकर दी दे दे ताल।

जागर दी दे दे तान जागर दी कौन चंदन जागर दी दे दे तान जागर दी कौन चंदन चल दाने दाने बोलाने चल चंदन चल दाने दाने बोलाने चल चंदन जागर दी धर्म से तान जागर दी देव चरना जागर दी धर्म से तान जागर दी देव चरना बाजू दी वृक्ष बाजू दी तान तो मरना बाजू दी वृक्ष बाजू दी तान तो मरना जागर दाने दाने बोलाने चल चंदन जागर दी दे दे तान जागर दी कौन चंदन जागर दी दे दे तान जागर दी कौन चंदन Bagger the bird, bagger the bird, bagger the bird, bagger the bird, bagger the bird, bagger the bird, bagger the bird, bagger the bird, bagger the bird, bagger the bird, bagger the bird, bagger the bird, bagger the bird, bagger the bird, bagger the bird, bagger the bird, bagger the bird, bagger the bird, bagger the bird, bagger the bird, bagger the bird, bagger the bird, bagger the bird, bagger the bird, bagger the bird, bagger the bird, bagger the bird, bagger the bird, bagger the bird, bagger the bird, bagger the bird, bagger the bird, bagger the bird, bagger the bird, bagger the bird, bagger the bird, bagger the bird, bagger the bird, bagger the bird, bagger the bird, bagger the bird, bagger the bird, bagger the bird, bagger the bird, bagger the bird, bagger the bird, bagger the bird, bagger the bird, bagger the bird, bagger the bird, bagger the bird, bagger the bird, bagger the bird, bagger the bird, bagger the b

नक्षत्र वीणा का स्वर है दीन, बिरना जो है ये सितार का स्वर है, बिरना तिरना सितार वजदा और बीन जड़ा है वचित्र वीणा वजदा, यह साजा के दर्शन कराए ने।

रूप पवन गुरु पाणी पिता माता धर्म महत दिवस रात को दाई दया खेले कर्म अप अपनी सारे जपो जिन्नी नाम गए मशक्कत।

हमारी जेबा एक ब्रह्म हर के गुण अगम अथाह हम क्यों कर जपे आनिया हर तुम बड अगम अथाह।

Amri jeba et bukrabu. Jeba eg anek gun tare nanak charni paahe. Jeba eg kaman gun kaiye tere gun bahute. मैं एक न जानिया कवन गुण कहिए जेबा एक तू समरथ बजा मेरी मत थोरी रा मेरी मत थोरी रा हम अज्ञान अल्प मत थोरी तू समरथ बजा वड्डी हो

वड्डी हूँ बड्डा अपार तेरा मर्तबा, वड्डी हूँ बड्डा अपार तेरा मर्तबा। निर्मल निर्मल सूचा, निर्मल निर्मल सूचा, सूचो सूचा सूचो सूचा, सूचो सूचा सूचो सूचा, अंत न अंता सदा बेअंता। कहो नानक ऊंचो ऊंचा, ऊंचो ऊंचा, ऊंचे ते ऊंचो जानी जे प्रभ ते रुठान, ऊंचे ते ऊंचो जानी जे प्रभ ते रुठान। तेरो थान, तेरा थान सुहावा रूप सुहावा, तेरे भक्त सोहे दरबारे, तेरा थान सुहावा, तेरा थान सुहावा, अर्थ सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया, तेरा थान सुहावा। हर जपे हर मंदिर साजिया, हर मंदिर साजिया, संत भगत गुण गावे राम। हर मंदिर साजिया, निर्वैर पुरख सतगुर प्रभु दाते, निर्वैर पुरख सतगुर प्रभु दाते, हमें अपराधी तुम बख्शाते। किस पापी को मिले न कोई, किस पापी को मिले न कोई, शरण आवे।

साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का पावन उपदेश जय देव नामा विप सुदामा तिन को कृपा पई है अपार। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज भगत जय देव का जिक्र करते हैं और ये पौड़ी भाई गुरदास जी की उच्चारण की प्रेम भगत जय देव कर गीत गोबिंद सहज तुन गावे। भगत जय देव जेडे उस परमात्मा दी प्रेमा भगती करते हैं जिन्ना ने गीत गोबिंद ग्रंथ लिखे है। भगत जयदेव की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच दर्ज है। जदों भी आप गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मत्था टेकदे हां भगत जयदेव नूं भी असी मत्था टेकदे हां। भगत जयदेव बंगाल दे विच पैदा होए ए ब्राह्मण सन और भगत जी बारे भाई गुरदास जी अपनी पौड़ी विच बयान करते हैं। आज आप भगत जयदेव जी दे बारे विचार करांगे। आओ पहला इन्हां पंक्तियां नूं सारे रल के पढ़िए। प्रेम भगत जय देव कर गीत गोबिंद सहज तुन गावे।

प्यास लगी पर लागे जागे कोई पिंड नहीं कोई पानी नहीं, गर्मी नाल बेसुरत होके धरती ते डिग पए। ते साहब जी बाणी विच बयान करदे ने, भगत जना की हर जीव राखै तुर तू रखदा आया राम। वो भगतां दे नाल वसदा, भगत डिगा ते कृष्ण जी महाराज एक गवाले दा रूप धार के ते कोल आए, हाथ विच दुध दा कड़वा, भगत दे मुंह विच दुध पाया, होश आई ते भगत जी हैरान होके पुछदे ने, काका तू कौन है कित्थों आया, ये ते जंगल है, ना इत्थे कोई बंदा ना बंदे दी जात ना कोई घर। कृष्ण जी महाराज ने देखिया कि भगत होश विच आ चुका है, मेरा कार्य हो गया। कहन लगे ओ देख तेरे पिछले पासे साडा पिंड है, उत्थे मेरियां गावां चरदियां ने। ते भगत जी कहंदे ने हुणे ही मैं इधर आया सां, उदू ते कुछ भी नहीं सी, अच्छा देखदा मुंह दूसरे पासे कीता, किथे तेरा घर किथे तेरियां गावां, हुण उधर कुछ भी नहीं सी। भगत जी कहन लगे काका उधर ते कुछ भी नहीं, पर आवाज कोई ना आई। मुड़ के देखिया ते ओ लड़का जेड़ा दुध ला गड़वा लेके खड़ा सी ओ उत्थों अलोप हो चुका है। हुण मन वैराग नाल भर आया ते भरोसा होर बज गया कि मना जिदी याद विच मैं तुरे हां ओ मेरे तो दूर कोई नहीं। आखो सतनाम सिंह वाहिगुरु।

हाथ जोर जोर कहूं श्री गुरु गोबिंद सिंह हाथ जोर जोर कहूं आपके वचन की प्रतीत कौन मानगो श्री गुरु गोबिंद सिंह हाथ जोर जोर

सच्चे पातशाह जी दी शरण दे अंदर रह रहे बड़े पतवंते कवि जिन्हां ने साहिब गरीब नवाज गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी पावन चरणा अंदर बिनय कीती, सतगुरु जिन्नियां गल्लां आप जी ने कहे हन, जितने वचन महाराज जी, वह सब सच होए ने। पर गरीब नवाज सच्चे पातशाह आप समय नूं जानन हार हो, समय दी ठीक समय अनुसार पहचान करन वाले सतगुरु जी, आप जी ने कई दफा कहा भाई पंथ ते बड़ा बिखड़ा समा आउणा, पंथ ते बड़ा बिखड़ा समा आउणा, पर पंथ दी अगवाई करन वाला साहिब गरीब नवाज गुरु गोबिंद सिंह महाराज आप तो बगैर कौन है। तो गरीब नवाज साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह नूं कवि ने हाथ जोड़ जोड़ के बेनती की थी, साहिब सच्चे पातशाह महाराज पंथ की राखो ताकि ग्रंथ की मानता रह जाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिन्हों अजे गुरता गद्दी नहीं सी बख्शी, गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी चरणा च जदों सिखां ने बेनती की, महाराज पंथ की इज्जत पत आबरू आप जी ने बचाई है, तो पंथ नूं कुछ ऐसे नियम दिओ जिस दे नाल इन्हां दी सारी रहिंदी दुनिया तक इन्हां दी रही जावे। ते साहिब गरीब नवाज सच्चे पातशाह महाराज ने सिखां नूं एक वचन कहा सी श्री आनंदपुर साहिब की धरती दे उपर बैठे हां कि पंथ जिन्ना चिर शब्द ते लड़ लगा रहेगा, अकाल पुरख की पूजा विच लगा रहेगा, उन्हां चिर एक कुराहे नहीं पै सकता। जिन्हें अकाल पुरख की जदों इसने पूजा छड़ दिती ना, यह भटक जाएगा, कुराहे पै जाएगा। ते गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी दियां ओ गल्लां अते वचन जिहड़े हन श्री अबचल नगर हजूर साहब विखे गरीब नवाज सच्चे पातशाह ने भाई प्रहलाद ते भाई नंद लाल जी की समस्त पेश कीते। गरीब नवाज सच्चे पातशाह महाराज उस समय का वातावरण जो रहतनामे अंदर लिखिया है गरीब नवाज वर्णन करते हैं।

महाराज कलगीधर पिता ने भाई नंद लाल नूं कहा भाई आ तैनूं दसीए भी साडे रूप केड़े केड़े ने केड़े रूप दे तुसी अज तक दर्शन कीते ने ते केड़े दे दर्शन नहीं कीते ते केड़े दे आद जगाद तुसी दर्शन करने ने।

पहला रूप साडा ए है जिहड़ा तिना गुणा तो परे है, रजो तमो सतो इन्हां तिना गुणों तो परे है। ये जिवें सारी बनस्पति दे अंदर अग है ना, किसे भी दरख्त नूं छांग के वेख लो, भावें ओ अंब दा होवे, भावें पिकर दा होवे, भावें दरख्त निम दा है, भावें टाली दा है, अग सारियां दे अंदर है। झट ही सारियां नूं अग फड़ लेगी क्योंकि बनस्पति दे अंदर अग है। ते सारे दुद्धां नूं इकट्ठियां कर लो, भावें ओ घा दा दुद्ध होवे ते भावें मझ दा होवे, गां दा होवे, बकरी दा होवे, किसे दा भी दुद्ध होवे, उस दे अंदर घिओ है। जिवें दुद्ध अंदर घिओ ते बनस्पति दे अंदर अग है। घट घट व्याप रहा परमात्मा वाहिगुरु सच्चे पातशाह जर्रे जर्रे अंदर जिहड़ा वसदा पिया, एक रूप साडा ओ है जिवें जल किसे घड़े दे अंदर पाया होवे। ते जल जल दा रूप है, जल दे अंदर भी परमात्मा वस रहा है। पहला रूप साडा तिना गुणा तो परे है, कोई उस गुण नूं जान नहीं सकता, कोई उस नूं वेख नहीं सकता। वेखन अंदर ते बड़ा कुछ नजर आ रहा है पर अनुभव दी अख नाल कोई नहीं वेख सकता, इस करके इस गुण की पहचान होनी मुश्किल है क्योंकि इस दे विच कोई रूप नहीं। ए चक्कर चिहन अर बरण जात अर पात नहन, जे रूप रंग अर रेख देख को कह ना सकत के। ए लंबा चल, इस रूप नूं अखां नाल वेख सकदे हो, अनुभव नहीं कर सकदे।

मैं तेनू एक होर बात कहना, जिन्ने अखर ने ए मेरे रोम हन, शरीर दे जितने रोम ने ना, साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज सचे पातशाह ने कहा गुरु ग्रंथ साहिब विच आए हुए अखर ए मेरे रोम ने, ते जे एक भी अखर उरा परां हो जाए समझो मेरा रोम टुट जाएगा, समझो रोमा दी बिरद भी हो जाएगी। ते गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बाणी पढ़न लगे, असी विचार नहीं करते कितनियां लगा मात्रा अगे पिछे हो जांदियां ने, किन्नी नरादरी हुंदी, कोई पवित्रता नहीं। मैले हथ जड़े हन गुरु ग्रंथ साहिब दे अंगां नूं ला दिंदे आ, समझो गुरु गोबिंद सिंह महाराज सचे पातशाह जी दे पवित्र चेहरे नूं साडा मैला हथ लगे। इस करके बड़ी पवित्रता दे नाल गुरु के सिखो, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नूं गुरु मानो। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नूं हाजिर गुरु मनोगे ते साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे दर्शन इसे विचों होणगे, दस पातशाहियां दे दर्शन होणगे। भाई नंद लाल जिन्हां लगा मात्रा ते अखर ने ए मेरे रोम ने, बड़े पवित्र हिरदे नाल पढ़ने, बड़ी सोच विचार करके पढ़ने, किते अंगां दी बेअदबी ना हो जाए, किते रोम जड़े हन टुट ना जान साहिब सचे पातशाह महाराज दे। इस करके बड़े अदब नाल गुरु का सिख गुरु की बाणी पढ़े, गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था टेके हाजरा गुरु मन्ने। अगले वचन साहिब सचे पातशाह जी ने कहे।

मनुख तू चेते कर माता के उदर में प्रतिपाल करे। सो क्यों मनो विशारिये, मनो क्यों विशारिये एवड दाता जो अग्न में आहार पहुंचावे। ओ वेला याद कर शेर तले पांव ऊपरे वसंदो कोतड़े थाए। नानक सो तनी क्यों विशारिये उदरे जिसके दाए। ओ समा चेते कर जदों तू पुठा लटकिया होया सी ते कितनी माड़ी जगह ते कोहथड़े थां ते तू लटक रिया सैं जिथों मल मूत्र लंघ रिया सी। उस वेले तू अरदास करदा सैं हे निरंकार मैनू इस कुंभी नरक विचों कढ़ मैं तेरा शिवरन करांगा तेरा नाम जपांगा। ओए तैनू क्यों भुल गया ओ वेला तू क्या सी मैं अमृत वेले गुरबाणी गासा सत संगत बह के हर नाम दिया सा तू भूल गया वह दे पै गए हनेरे। ओए सुन मन गाफल पल पल करके तेरा जीवन घटता जा रहा है।

अनेक सुख रस भोगन पूरे ग्रह सोहन चंदन सुगंध ग्रह सोहन चंदन सुगंध

0: अति सुंदर कुलीन चतर मुख ज्ञानी तनवंत मृतक कहिया नानका जय है प्रीत नाही भगवंत।
1: बेशक दुनिया दे सुख प्राप्त होवन सारी सृष्टि दा राज भी प्राप्त हो जावे बिना नाम तो मन शांत नहीं बिना नाम तो सुख नहीं। सगल सृष्टि को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया। नाम दे विच ही सारे सुख हन नाम दे विच ही सारे पदार्थ हन। सुखी कौन है जो जप रहा श्री वाहिगुरु। हजूर बाणी विच बख्शिश कर रहे हन के सुंदर सेज होवे अनेकां सुख किसे भी सुख की कमी ना होवे। महल माड़ियां भी सुंदर होन सुगंधियां भी कपड़ियां नू लगियां होन मन बांछित फल मानदा होवे मन इच्छे सुख मानदा किस नाहे भी सूरे कोई फिक्र फाका ना होवे। पर हजूर कहंदन जे परमेश्वर दा नाम नहीं चेते ता ऐसे मनुख नू समझ लो जिस तरह विष्टा दा कीड़ा किसे कम नहीं आउंदा इसे तरह ही ओ मनुख है। सो प्रभ चित ना आवई जे नाम चेते नहीं है ता हजूर कहंदन सो प्रभ चित ना आवई विष्टा के कीड़े। कोई बेशक उच्ची कुल दा भी होवे सुंदर भी होवे चतुर भी होवे बड़िया ज्ञान दिया बातां भी करता होवे जे मन करके गुरु चरणा दी प्रीति नहीं ता हजूर कहंदे न ओ ता एक मरे हुए पशु दे समान है। क्योंकि दरगाह विच ता अगे करनी कीरत वाची है तेरे मन विच कितना को गुरु दा प्यार है कितना को सत्कार है अगे ता ए वाचिया जाना है। कोई चार अखर घट पढ़ लवे कोई वध पढ़ लवे पर अगे ए नहीं पुछा जाना भाई तू कितनी को पढ़ाई कीती है कितनी को माया कठी कीती है। अगे ता भाई करनी कीर्त वाची है की करनी कमाई कीती चौबी घंटिया विचों कितना को समा तू परमेश्वर दी बंदगी विच मन करके बतीत कीता है। मामूली दुकानदार नू वेखिए सवेर तो शाम तक हिसाब ला लैंदा अज की कमाया है की गवाया है। मनुख दे 24,000 स्वास बिना जपन तो रोज दे व्यर्थ जा रहे हन इसने कदी ख्याल नहीं कीता। ए चेता कराउंदे हन जपन वाले ए चेता कराउंदे हन महापुरख ते जिन्होंने उन्हां दे बचना नू पले बन लिया फिर लोक सुखी पर लोक सुहेले। कबीर जी ने वेखिया एक सेठ बैठा है दुकान ते बड़े नौकर चाकर हुक्म दी उड़ीक विच खड़ोते हन। मन च सोचिया भाई इस नू कदी सत संगत विच नहीं वेखिया ते होवे ना ता इस नू बेनती करिए भाई सत संगत विच आया करो। कबीर जी जा खड़ोते ते फिर ए बड़े हंकार नाल कहन लगा नौकर नू भाई दियो कुछ ते तोरो इस नू क्योंकि हजूर कहंदे ना माया तारी अन्ना बोला गुर शब्द।

वारी वंजा खनिए वंजा तौ साहिब के नामी ऐ परमेश्वर मैं तेरे तुवारी तेरे नाम तो कुर्बान जाना तन गुरु नानक साहब जी बयान कर देगा। आओ अपनिया बिरतियां उस पासे ले चलिए गुरु नानक साहब दे पिता मेहता कालू जी तन गुरु नानक साहब का राह पै तक दे बेबे नानकी गुरु नानक साहब के वड्डे भैन जी आए अपने पिता मेहता कालू नू मिले नाल बेबे नानकी दे पति भाईया जयराम भी आए। बेबे नानकी जी पिता मेहता कालू नू मिल के अपनी माता माता तृप्ता नू गले लग के मिले तेनू गल ना लगाया ता माता तृप्ता जी एकदम रोना निकल गए ते नाले कहन लगे जीए हुण ते बड़ा चिर हो गया नानक नू देखे तू आई है कुछ भरोसा होया मन नू कि तेरा वीर मेरा सपुत्र गुरु नानक भी आवेगा। दूसरे पास भाईया जय राव अपनी सौरा साहब मेहता कालू जी दे पैरां ते मत्था टेके मेहता जी ने प्यार दिता ते भाईया जय राम जी भी पुछदे ने पिता जी गुरु नानक साहब हाली नहीं आए असी ते इस आस्ते आए हां कि इस वरी जरूर महाराज के दर्शन होंगे। भाईया जयराम रिश्ते दे विच गुरु नानक साहब के भाईया लगते ने जिन्हां नूं आपां जीजा भी कहने पर ओ रिश्तेदारी कट और गुरु नानक साहब के सेवक ज्यादा ने। मेहता कालू जी कहन लगे जयराम तुसी आए हो मैनू भी भरोसा हो रहा है कि मेरा नानक जरूर आवेगा। कुछ समा बीते भाई मनसुख भाई भगीरथ गुरु नानक नाल प्यार करन वाले ए भी आए ता बेबे नानकी जी दे दर्शन कीते इन्हां ने हाथ जोड़ के आखे है बेबे जी गुरु नानक साहब आए ने ता बेबे नानक जी कहन लगे हाली आए ते नहीं पर जद बसंत रुत ने आना होवे ठंडी हवा पहला चलन लग पैंदी बहार ने आना होवे कुंजां दियां डारां पहला उड्डन लग पैंदियां ने। जे गुरु नानक दे प्यारे आए ने ते गुरु नानक भी अज जरूर आवेगा। भाईया जय राव गुरु नानक साहब की याद विच जंगल वाल तुर पए एक दरख्त दे थले बैठे बड़े वैराग दे विच गुरु नानक साहब का उचारिया होया ए शब्द गाण लग पए अमली अमल ना अंबड़े मच्छी नीर ना होए जो रते सह अपने तिन भावे सब कोए। ऐ बादशाह जिस तरह अमली अमल नाल प्यार करदे अमल तो बगैर जी नहीं सकदा मच्छी पानी तो बगैर नहीं जी सकदी असी भी तेरे नाल इस तरह ही प्यार करने हैं तेरे बगैर असी भी जी नहीं सकते।

इधर माता तृप्ता जी अपने सपुत्र धन गुरु नानक साहब की याद विच मंजी ते लंबे पए। एक पासे मेहता कालू जी भरा पए देखते और एक पासे भाई अजय राम जी और एक पासे रायपुर की तलवंडी का राजा राय बुलार और प्यारे उड़ीकते पए ने कि इस वरी जरूर गुरु नानक साहब की वरे गंढ गुरु नानक साहब की हजूरी विच मनावांगे। सूरज डुबण वाला हो गया मेहता कालू जी दरवाजे वाल निगाह टिका के बैठे हैं और बेबे नानकी जी छत ते खड़े होके राह पै थकदे ने। अचानक मेहता कालू जी खुशी नाल झूम उठे और आवाज मारदे ने, तृप्ता आओ देख मेरा नानक आ गया है। कहंदिया होया बुढ़ा बाबा कालू उठ के खड़े होए पर सचमुच सामने धन गुरु नानक साहब नाल सेवक मरदाना वेड़े विच दाखिल होए और आंदिया धन गुरु नानक साहब ने इस सद लाई सत करतार। इस सत करतार अंदर जिवें लह गया दिल दी गहराई विच मेहता कालू जी खुशी नाल झूमदे होए अगे वधे। धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे कोल आए गुरु होण दा मन विच गुमान ने अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकिया जिस गुरु नानक नूं दुनिया नमस्कारां करदी है ओ धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकदे ने ते पिता ने बाहां तों फड़ के अपने सपुत्र गुरु नानक साहब नूं गल दे नाल लाए कंड ते हाथ फेरे है अथरू नहीं रुकदे ते कहंदे ने बेटा अज मन नूं ठंड पै गई बड़ा समा हो गया तैनू उड़ीकदे हैं तैनू बड़ा मैं झिड़किया तैनू मैं एक वारी चपेड़ा भी मारी है पर बेटा बाद विच जाने है कि तू की है। अचानक ख्याल आया कहन लगे जा बेटा पहला अपनी मां नूं मिल। धन गुरु नानक साहब माता तृप्ता जी दे कोल आए मंजी ते कोल बैठे ते की देखते ने माता जी दी अखां बंद ने हाथां विच चोला है आपे कदे कहंदे ने बेटा नानक ऐ चोला पाला है आप ही फिर कह उठते ने लिया मां मैं चोला पवा। ए वैराग देखे ते धन गुरु नानक साहब अपनी माता दे हाथ फड़ के कहन लगे मां अखां खोल सचमुच मैं आ गया लिया मां मैनू चोला पवा। अखां खोलियां सपुत्र भी होवे फिर धन गुरु नानक साहब वर्ग घुट के छाती ना लाया अथरू किधे रुकन कहन लगे बेटा हर साल तेरे जन्म दिन ते चोला सीह के रख दी है। ते साहब जी कहन लगे मां लिया फिर मैनू चोला पवा। पलो पली विच ए खबर सारे शहर विच फैल गई संगतां शहर दे वासी और वह प्यारे जिहड़े कीर्तन विच जुड़े सन दर्शन करन वास्ते उमड़ पए ते बेबे नानकी जी हाल भी छत ते खड़े सन कि पहला माता पिता मिल लैण

जद इतने बचन कहे भैन जी है बेबे नानकी तुसी वड्डे हो तुसी मेरे पैरां ते मत्था टेको ए नहीं हो सकता। सात संगत एक एक लफज विचों साडे जीवन वास्ते सिख्या है ते वखरी गल है। इन्हां गल्लां नूं कोई मन्ने भावें ना मन्ने पर सुख तां मनण विच ही है। हुण तां गुरु नानक साहब ने भाई मरदाने नूं किहा मरदाने आ हुण तुसीं जा के भाई अजय राम जी नूं लै के आओ। शहर वासियां नूं पता लग गया सी दीपमाला उस वेले शुरू हो गई कि धन गुरु नानक साहब का अज जन्मदिन मनाने का सुभाग प्राप्त हो रहा है। पर कुछ देर बाद धन गुरु नानक साहब आप उठे ता पिता मेहता कालू जी पुछदे ने बेटा किथे चले। साहब जी कहन लगे मरदाना भाई अजय राम नूं वैराग विच उठा नहीं सके। धन गुरु नानक साहब आप उस जगह पहुंचे जिथे भाई अजय राम जी वैराग विच बैठे शब्द गा रहे सन। अगे भाई मरदाना कोल बैठे शब्द पढ़ रहे और वार वार कह रहे सन जय राम जी उठो। धन गुरु नानक साहब आ गए ने पर भाई अजय राम जी वैराग विचों उठ ना सके क्योंकि ए प्यार भागा नाल मिलदा है और इस प्यार नूं ओही जानदा है जिसने ये प्यार किया। भगत कबीर जी कहंदे ने सो कत जाने पीर पराई जां के अंतर दर्द ना पाई। भगत रविदास और भगत कबीर साहब दोनों दे शब्द पढ़िए इको ही गल नजर आती। भगत रविदास वो भी मन की तड़प दसते ने और भगत कबीर साहब जी कहंदे ने लागी होए सो जाने वीर राम भगत अणियाले दीर कि प्रेमा भगती दे तीर जड़े ने जिन्हों लग जा जिन्हों तीर लगते ने ओही जाने

जैसे एक जननी के होत हैं अनेक सुत, सभी में अधिक प्यारो सुत बोध को स्याने सुत बनज व्यवहार के विचार बिखे, गोद में अचेत एक संपैना सुहेद को स्याने सुत बनज व्यवहार के विचार बिखे, गोद में अचेत हेत संपैना सुहेद को।

गुरुमुख पैर सकार थे, गुरुमुख मार्ग चाल चलंदे, गुरुद्वारे जान चल, साध संगत चल जाए बहंदे। तावन पर उपकार नो गुरसिखा नो खोज लहंदे, दुबदा पंथ न तावनी माया विच उदास रहंदे।

प्रकार की भगती दसी है और सारिया भगतिया विचों उत्तम भगती है कलयुग दे विच। कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिए लाए त्याना। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जागदी जोत जुगो जुग अटल सतगुरु जी बख्शिश कर रहे हैं कि भगतियां विचों प्रधान भगती है। जपां सिर जप है, तपां सिर तप है, कर्मन सिर कर्म है। जो सत संगत विच बह के कीर्तन दी समाधि ला के जपना श्री वाहेगुरु उत्तम भगती है। कीर्तन दी भगती आख्या जिन्ह ने कीर्तन विच समाधि जोड़ ली, मन जोड़ लिया, वो आप ही नहीं तरे, आप तरे सगले कुल तारे। सारिया कुलां उन्हां दियां तर गईयां, हर दरगह पत स्यों जाएंदा। संसार विच भी उन्हां दी जय जयकार, ते दरगाह विच भी फिर रे रे दरगह कहे ना को। आओ बैठ आदर सब देव, वो आदरणीय हो गए भाई जिन्हां ने गुरु को नो सिफत।

श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज उन्हां दी रसना चों निकलिया होया महान फैसला साच कहूं सुन लेओ सवे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। सेवा ते सिमरन दो चीजां ने। दास बैठा बैठा कीर्तन करदे ही सोच रहा सी जो सिमरन है उनू गाउना ते उनू सुनना इहदे बारे भी मेरे पातशाह दा फैसला है। गावीए सुनिए मन रखिए भाओ तेरे अंदर भाव होवे तेरे गाउन ते सुनन विच प्रेम भाव होवे फिर दुख पर हर सुख कर लै जाए भाव होवे। जे सेवा नू लै लईए ते तां वी महाराज जी दा फुरमान है सतगुरु की सेवा सफल है शर्त जे को करे चित लाए। एदे च वी चित लगा प्रेम होवे फिर आ कृपा वरसदी है मन चिंदिया फल पावना ते होमे विच्छों जाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच सेवा बारे भी सिमरन बारे भी सतगुरु जी दे फैसले इहदे विच प्रेम होवे। चार तरह दे जीव धरती ते वसदे ने। वीरवार दे सत्संग विच रूटीन विच आए हो गुरु नानक पातशाह दी दुकान दे उत्तों जिथे जिथे जगह मिले बैठ के सौदा खरीदना जरूर मन दी पत्री फरोलनी के इना चारां विच्चों असी किथे पहुंचे हां। चार तरह दे जीव ने धरती ते एक है मिल क्लास एक थर्ड क्लास एक मध्यम क्लास एक उत्तम क्लास। एक मिल एक थर्ड एक मध्यम एक उत्तम। निल कौन ने जिन्हां नूं बिल्कुल रब वाले पासे दी ना लगन है ना ज्ञान है बिल्कुल निल है ही नहीं किसे खाते च। ओ जीव खाली आउंदे ने खाली चले जांदे ने। थोड़ा जा नक्शा वेखना होवे ते निल क्लास वालियां दा श्री गुरु तेग बहादुर महाराज मेरे पोरियां च बैठ के बंदगी करन वाले चित आया ते दुनिया नूं तारन लई भी निकले ने। एक पंधेरी नगर है सतगुरु महाराज दे सिखां ने जदों उत्थों दे प्रबंधकां नूं सुनिया दिता वी नौवें पातशाह आए ने गुरु नानक दी जोत। उन्हां ने हल्के लफज बोले
ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੋਹਾਂ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਲ ਵਿਚ ਨਾ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਚ ਜਾਓ। ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਜਵਾਨ ਰਾਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤਖ਼ਤੇ ਤੇ ਵੀ ਲਟਕਾ ਦੇਵੇ। ਦੋ ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਨਾਨਕ ਸਿੱਕੇ

बस प्रभ आप नानक ते जन सहज समात नानक ते जन सहज समात। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मान योग साध संगत जी, सुखमनी अंदर साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने मनुख नू ऐसा आचरण जिन्हू असी अज दी भाषा विच सदाचार करैक्टर कहिंदे आ बनाउण दी प्रेरणा दित्ती। ते सतगुरु कहिंदे ने भी मनुख जिहड़ा ना है ते बड़ी वधिया चीज, सब तो श्रेष्ठ है, पर इहदी श्रेष्ठता इस गल तो सिद्ध होएगी कि जिस कार्य वास्ते इस नूं बनाया गया वो काम इहदे कोलों होया या नहीं होया। यह सिर्फ एक डेकोरेशन पीस ते नहीं, अपने मनोरथ नूं सिद्ध भी करदा है। गुरदेव कहिंदे ने जानकै अंतर वसै प्रभ आप नानक ते जन सहज समात। ते बंदा कहिंदा है कि परमात्मा ते सारिआं अंदर वसदा ही है, वो ते गैर हाजर नहीं है, पर इथे भाव सतगुरु सच्चे पातशाह दा कुछ होर है। गुरदेव कहिंदे ने वसदा ते सारिआं अंदर है, पर जिस मनुख दे सुभाव विच सहज विच इह गल बन जाए कि वह हर वेले इह समझे कि परमात्मा मेरे अंदर वसदा है, जे इस अहसास नाल उह जीण लग पवे जिन्हों असी नाम कहने भगती कहने ते फिर समझो कि वह अपने जीवन मनोरथ विच सफल होएगा। ताइयों ते सतगुरु जी ने बाणी विच इक थां ते इह गल कही है, कहिंदे ने पशु मिणै चंगियाईआं खड़ खावै अमृत देह। कहिंदे ने पशुआं कोलों चंगियाईआं मिलदियां ने, जे गऊ दा कर्म दुध देना है जीवन दा मनोरथ तां उह दुध देंदी है, किसी तरह का भी भोजन उस नूं दे दिओ वह दुध देगी। इसे तरह बाकी दे भी जीवन के मनोरथ हैगे ने ते वह अपने मनोरथां तक पहुंचे हुए ने, पर मनुख के जीवन का मनोरथ नाम है। इस करके सतगुरु कहिंदे नाम विहूणे आदमी त्रिग जीवन कर्म करें। कहिंदे जिहड़े भी कर्म करदे ने जिस तरह का भी वह जीवन बतीत करदे आ लांती है त्रिकार है, क्योंकि नाम नहीं। इसे करके गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने संस्कृति विच एक वचन कीता, कहिंदे ने गुर मंत्र हीणस्य जो प्राणी त्रिगंत जन्म प्रश्न है, कूकर है सूकर है गर्द बह काक है सरपन है तुल खल है। कहिंदे ने मनुख नाम नहीं जपदा गुरु की सिख्या के मुताबिक तो कुत्ता है सूर है सप है, कहिंदे ने जानवर है मनुख नहीं। ते मनुख दा असल असला प्रगट हुंदा है उहदी करतूत तो। बाहरों ते चंगे भले कपड़े पा के मनुख बहुत सुंदर बन के संसार विच विचरदा है, लेकिन कई बारी जदों गल माड़ी करदा है कहिंदे बंदा कदा गधा है, कई बारी आने नरा बैल है, कई बारी जदों बहादुरी दा कर्म करदा ते कहिंदे बंदा शेर है, इसे तरह जदों किते डंग मारदा विसा के कहिंदे ते सप है। मनुख दी अंदर दी करतूत प्रगट करदी है कि मनुख अंदरों की है। और खिमा करना ये माण असी ना करिए कि असी शायद पहलों भी मनुख ही सां, पता नहीं कई जन्म पै कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरप होयो, कई जन्म हैवर ब्रिख जोयो, पता नहीं कितों कितों होके आए हैं। ये ते वाहेगुरु अकाल पुरख ने मनुखा जीवन की बख्शिश की है, चांस दिता है सानू। असी पढ़ते हाँ गुरु नानक साहब के इतिहास।

राजा, अंध राजा आ गया सच्चे पातशाह ने आगता चीज में देख रही है टक रही है तेरा नंदलाल दिल कसीफ है दिल गलीज है दिल मेरा है ये सुथरा नहीं है साफ नहीं है पाकीजा नहीं है इसलिए इसन पाकीजा कर हाथ जोड़ के आखन लगा मेरे मालक अपने योग बना लो जिदा का तुम चाहिए बना लो सतगुरु जी मैनु कोई तरकीब दस दो सुझाव दे दो सच्चे पातशाह कहन लगे मेरा खालसा बैठा ना मेरा प्यारा खालसा प्रभु का प्यारा खालसा बैठा ना नंदलाल तेन एक जुगत दसदा हां लंगर चले जा लंगर जाके मेरे खालसा दे जिन्ने वधिया बर्तन थाल गिलास कोले मन ला के साफ करेगा और जिन्ना वधिया करेगा उन्ना तेरा कासा है कलम जल्दी मुरबर हो जाएगा दिल साफ हो जाएगा बस इसने गल पल्ले बन ले सीधा सीधा हां सतगुरां दे लंगर विच चले गया जानदिया इसने अपने बस्तरां दी कोई परवाह नहीं की थी अपनी बुजुर्गी वाल ने तकिया ते बर्तन साफ करन लग पिया कई दिन लंगर कई दिहाड़े गुजर गए कई दहाके गुजर गए इस लंगर की सेवा कर दिया साल गुजर गए एक दिन एक व्यक्ति ने आके आख्या आगरे तू इतने नंदलाल होना कितने खालसा जी तुसी वेख्या ही नंदलाल सिंह साहब तुहानू कितने पता ही नंदलाल का आखन लगे गुरु ने एक फरमान कर दिता हुक्म कर दिता लंगर विच होवेगा जाके वेख लो बुजुर्ग ने जाके वेखे ना तो लंगर विच बर्तन पिया साफ करे नंदलाल गिट गिट उसते सुआह चढ़ी हुई जूठा चढ़िया हुई खालसे दिया पर गुरु का बचन उसने पल्ले बन लिया कि जिन्ने वधिया बर्तन साफ करांगा मन उन्ना वधिया साफ उजला हो जाएगा इसलिए हुण ये गल घट करता है बचन घट करता है बर्तन ज्यादा साफ करता है उस व्यक्ति ने मोढ़े हाथ ला के आखे नंद ला लो ये बोले ना आखन लगे मैं पुछदा जी तुसी नंद ला लो बोलते ने कहन लगा जिस दिन का मैं गुरु दर घर विच आ गया हां मैनू इस गल की सोझी पै गई है कि बहुता बोलन चखण होए बिन बोले जाने सब सो इसलिए मैं बोलदा नंद लाल कोई ते गुफ्तू कर कोई ते बचन कर इसने पिछले मुंह करके उस बुजुर्ग आगरे को आए वाले कहन लगा हमें फुर्सत नहीं मिलती किसी से बात करने की हमें फुर्सत नहीं मिलती किसी से बात करने की ख्याल यार अपना हर वक्त मेहमान रहता।

सुन ली तेरी गल, ये तो गुरु दर का कुत्ता बन गया, कुकर बन गया। कबीर जी ने शायद इसे लिए आख्या, कबीर कुकर राम को मुतिया मेरो नाम, गले हमारे जेवरी जे खिंचे पह जाओ। जिस वेले उसने अपने आप नु सग कहा, कुत्ता कहा, आखन लगा तो होर भी गल है, मेरे ते गुरु गोविंद सिंह जी का निशान पै गया है, मैं दागया गया हां। नंद लाल उसे सुन ले तेरी गल, आखन लगा नाना कई कुत्ते मालक नु इन्ने प्यारे हुंदे ने कि छेज ते चढ़ जांदे हो, बाबा मैनू हाली ए अवसर प्राप्त नहीं होया, ए मौका नहीं मिलिया कि मैं गुरु गोविंद सिंह जी दी छेज ते बैठ मा। नंद लाल आगरे ते बैंक पदार सन तेरे खान पीन वास्ते, इत्थे की मिलदा है, इत्थे की मिलदा है। ते नंद लाल ने बड़े सुरूर विच आके, बड़े वजद विच आके, बड़ी मस्ती विच आके

एक दे एक बन खाक बाद आतस ओ आब कोर लाओ है अल्ले अपेख सोई पुरान ओ कुरान ओई एक

नाही प्रभ सब किश तेरा। ईगे निर्गुण उगे सरगुण केल करत विच स्वामी मेरा। बेनती कर रहा है भाई नंद लाल, कलगीधर सच्चे पातशाह दे दर्शन कीते ते दिल दे बैठा, क्योंकि जिथे मन मनना हुंदा है उथे पहली नजर विच मन मन जांदा है। भाई नंद लाल ने जदों कलगीधर सच्चे पातशाह दे दर्शन कीते ते मन मन गए। अज मंग रहे साहब कलगीधर सच्चे पातशाह दे चरण फड़ के एक अमोलक दात मंग रहे। हजूर कलगीधर पातशाह सिंघासन ते बैठे हन, गल पल्ला पाया भाई नंद लाल ने ता की मंगया। गरीब नवाज जे तुठे हो ता एक नजर मेहर दी करियो, एक मेहर दी निगाह जे मेरे वल चा करें। कया जान बदल विच देसा एक नजर मेहर दी करियो, गरीब नवाज जे एक निगाह मेरे वल मेहर दी करो ते इस दे बदले मैं अपनी जिंद जान तुहाडे चरणा विच पेटा कर दें।

मेरे हिरदे च कपट है ते तू मेरे कपट नू जानना। मैं भी कुछ जानना, मैं सिर्फ इन्ना जानना कि तेनू बख्शना भी आउंदा। जे तू साडे दिल दियां जानना है ते तेनू जान के फिर बख्शना भी आउंदा। वेख के साडे बारे जान के फिर खिमा कर देन दी भी गल तेरी है। ते जे साडे वल्लों गिणिया जावे ते फिर तां बड़ा मुश्किल है। जे मालिक तेनू प्रवान करन वास्ते, तेनू प्रवान होन वास्ते, तेनू प्राप्त करन वास्ते मैं अपने वल वेखा ना, मेरे कोल रूप है ना, मेरे कोल अखां ने ना, अखां विच ओह नजर है जिहड़ी तेनू वेख ते माण सके, ना मेरे कोल रूप है जिहड़ा तेनू दिखाया जा सके, ना मेरे कोल जबान है जिहदे विचों मिठे मिठे बचना नाल मैं तेनू रिझा सकां। बल्कि मेरी तां सुरत दे, मेरी करनी दे हथ पैर भी सिद्धे ने। कुलहीन कह लो, गुणहीन कह लो, ते जिहदी कुल भी कोई ना होवे, जिहदा गुण भी कोई ना होवे, उहदी शोभा भी काहदी। ऐसी अवस्था च मैं तेनूं प्राप्त किवें होवां, तेनूं प्रवान किवें होवां, तेरे नेड़े किवें होवां, कोई चारा नहीं। हां जद ए जानना कि तेरा बिरध बख्श लैण वाला है, तेरा सुभा तेरा नेम बख्श लैण दा, उदों आके भरोसा थोड़ा हो जांदा है।

गुरु दी खुशी दी मोर लग गई है किवें पता लगेगा। बड़ा डूंगा सवाल बाबा दीप सिंह जी ने गुरु गोबिंद सिंह जी के चरणां च रखिया। गुरु गोबिंद सिंह जी जवाब देंदे खड़े खड़े कहंदे दीप सिंह थोड़ी जी दिमाग विच रखना जी। दीप सिंह वैसे गुरु कर दयालू भावे थोड़ी भावे बहुती घालना किसे दी गुरु बिरथा नहीं जान देंदा है जी। पर जेड़ी तू गल पुछी ना पूरी खुशी दी मोर प्रमाण हो गई थोड़ी बहुत घालना एक दिल नहीं भन्ने घाले बिरथा।

देवते ते शहीद सिंह जदों भी तेरा समा पूरा होगा ओ लियाणगे ते मेरे को नहीं लियाणगे तू गुरु नानक दे दरबार जाएगी सदीखा को सतनाम ये गलती ना तेनू इत्थे ले आए ने मैनू कोई सेवा होवे दस मैं शरीर विच तेनू वापस भेजना है ये सच मैं सोची पै गया कि धर्मराज भी एक महापुरुषा दे लांगरी दी माता के हाथ जोड़दा होगा पर जो कई बैठे होंगे कट्टड़ वो एक जी में सुनाता।